0: हम है वो भारी एफएम।
1: Et tu me rêves.
0: Ouais, fatigue, on a hold ya heel from 2 minutes.